श्रोताओं नमस्कार, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आप हमें सुन रहे हैं FM 100.2 MHz पर। आज का दिन है रविवार, शक संवत 1948, श्रवण महीने की 11वीं तिथि और साथ ही अंग्रेजी सन 2026 अगस्त महीने की दूसरी तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आज की पहली सभा में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।

0: आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है।

0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चलिए आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कुछ ही देर में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 रहेगा वुमेन्स प्रोग्राम। 7:00 का समय रहेगा हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का दिन।

7:30 पर आप सुनेंगे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

8 बजे का समय रहेगा सिरो की रंगोली कार्यक्रम का। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुवार आंचलिक बातोरी। 9:15 पर आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में खेलमा कार्यक्रम। 9:25 रहेगा शांखोल कार्यक्रम। 9:35 पर आप सुनेंगे जयंतिया कार्यक्रम और 9:45 पर आप सुन पाएंगे ब्याते कार्यक्रम।

तो श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की पहली सभा को भक्ति गीत कार्यक्रम के साथ। चलिए सुनते हैं चंद भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। अब समय हो गया है वुमेन्स प्रोग्राम की ओर बढ़ने का। आज का वुमेन्स प्रोग्राम कार्यक्रम में आप सुनेंगे वैल्यू एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और हमारे रिसोर्स पर्सन इस कार्यक्रम के हैं सुदीपा डे। यह कार्यक्रम बनाया है तृष्णा चक्रवर्ती ने।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम समर्पित है हर नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता तुमुंग। मैंने अभी रिसेंटली डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से 12 पास किया है। मुझे असामीज डांस का बहुत शौक़ है और मैं बच्चों को डांस सिखाती भी हूँ, जो मुझे बहुत खुशी देती है। डांस मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक पैशन है, जिसके थ्रू मैं अपनी इमोशंस और क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करती हूँ। मैं एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हूँ, जो हमेशा कुछ नया सीखती ही है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं चैलेंजेस से डरने के बजाय उन्हें फेस करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मुझे अपने स्किल्स को और बेटर बनाना है और अपने इंटरेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग करियर में कन्वर्ट करना है। मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें और मैं अपने आप की एक अलग पहचान बना सकूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए फोकस रहती हूँ और हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने की तरफ काम कर रही हूँ। धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित है एक खास मेहमान। आप सभी को पता है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक टीचर का कितना महत्व रहता है। उनके डेडिकेशन की वजह से ही एक स्टूडेंट की ज़िंदगी निहारती है। चलिए स्वागत करते हैं सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर सुदीपा देव मैम की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू तृष्णा, नमस्कार
0: जी। आप अपने बारे में बताइए।
2: जी तृष्णा, मैं ऐसे तो टीचर हूँ सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल के
0: जी,
2: और इसके अलावा मैं बंगाली कल्याण परिषद का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी फिलहाल हूँ। उसके साथ साथ मैं बंगाली मातृसंघ, जो मदर्स एसोसिएशन से कहलाता है, वहाँ का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ हाफलोंग के अजाचक आश्रम है जो हरियम नाम से जाना जाता है, सो वहाँ भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सो यही मैं छोटा सा परिचय। थैंक यू। हाँ
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप टीचिंग के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई भी हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। मैम, आपने एजुकेशन लाइफ या कह सकते हैं कि आपने अपना एजुकेशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट की?
2: मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं एजुकेशन मेरी हुई। उसके बाद मैं यहाँ हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ से मैं हायर सेकेंडरी मैंने कम्प्लीट की, डिग्री भी वहीं से परस्यू की है। आफ्टर दैट आई डिड माई MA फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू से मैंने कम्प्लीट की। हाल ही में मैंने कम्प्लीट की, मेरा पेशन था और वैसे भी आफ्टर माई ग्रेजुएशन वो मौका शायद फैमिली कुछ सरकमस्टेंसेस थी जिसके वजह से मैं परस्यू नहीं कर सकी, बट देन आई कम्प्लीटेड रिसेंटली।
0: जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन।
2: थैंक यू सो मच। धन्यवाद
0: जी। जैसे आपने बताया कि आपने स्कूलिंग सेंट एग्नेस से ही कंप्लीट की है, अब आप वहाँ की ही टीचर हैं, आपको कैसा लगता है?
2: ये एक लॉन्ग स्टोरी है तृष्णा। व्हेन आई वेंट टू सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर टीचिंग, एक्चुअली उस टाइम में मेरी जो डिग्री BA फाइनल थी, उसके बाद हमारे जो टाइम मिलता है थ्री मंथ्स का जो गैपिंग होता है, तो उस टाइम में सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी सिस्टर मैरी सेबेस्टियन, वो हमारे फैमिली के साथ बहुत ही क्लोज थे। बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो उस टाइम में इमोशनल और मेंटल जो सपोर्ट जो चाहिए एक ग्रोइंग अप बच्चे को, तो मैं तो यंग थी उस टाइम में, तो सिस्टर मैरी सेबेस्टियन हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए थे एंड एवरी टाइम एवरी प्रॉब्लम, खुशी, गम जो भी हो, उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया है। तो ऐसा है कि मैं मैट्रिक के बाद भी मैं थ्री मंथ्स जो गैप हमारे जो मिलते थे उस गैप में भी मैं सेंट एग्नेस गई थी पढ़ाने के लिए। ऐसे सब्सटीट्यूट टीचर सिस्टर हमें बुलाते थे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, नथिंग, तो सिस्टर बुलाते थे तो हम जाके पढ़ाते थे। फिर हम हायर सेकेंडरी बाद भी गए थे सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो ग्रेजुएशन के बाद सिस्टर को पता था कि मेरी एग्जाम फॉर एग्जांपल आज खत्म हुई
0: जी,
2: तो
0: जी.
2: सिस्टर फोन किया उसी दिन, तो उस टाइम में तो मोबाइल तो नहीं थे तो टेलीफोन के माध्यम में शी कॉल मी, तो आर यू कमिंग टू स्कूल टू फॉर फ्यू मंथ्स, आई सेड श्योर सिस्टर. तो हम गए थे, तो क्या हुआ कि जाने के बाद सिस्टर हमें डायरेक्टली क्लास सिक्स में ले गई और वह बच्चे को दिस इज योर क्लास टीचर इंट्रोड्यूस किया. हमने पूछा भी नहीं क्यों, बट बिकॉज सिस्टर को कुछ शायद कुछ प्लान था और मेरा भी प्लान नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूँगी सेंट एग्नेस में. बट दैट थ्री मंथ्स आई कंटिन्यूड. आफ्टर दैट मेरी जो बड़ी बहन है वो भी लाइक वी डोंट हैव मदर, मम्मी भी नहीं थे, पापा भी उस टाइम नहीं थे. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, रिजल्ट ही नहीं निकला, पापा गुजर गए. देन द होल फैमिली लाइक डिपेंडेंट ऑन हर. तो ऐसा है कि मैं फिर फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाहती थी लेकिन फैमिली सरकमस्टेंसेस सिचुएशन के वजह में मैंने दीदी को कुछ बोला नहीं. और मैं आफ्टर थ्री मंथ्स आफ्टर माय रिजल्ट केम आउट आई वेंट थ्रो नाइसली. फिर मैंने कंटिन्यू किया, मैंने ये सोचा कि देखते हैं क्या होता है. एंड आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग एंड वो है कि प्रेशर भी था फर्दर परस्यू स्टडी करने के लिए
0: जी जी.
2: लेकिन मैंने ये स्टार्टेड एंड द जर्नी वेंट ऑन एंड स्टिल टुडे आई एम इन एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल.
0: जी, जर्नी एक अच्छी भी जर्नी है लेकिन साथ में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज भी है.
2: मेमोरीज है और स्कूल में हमें इतना कुछ दिया लेकिन ये सिर्फ इमोशनली नहीं, मतलब ऐसा फाइनेंशियली तो मैंने हमने कभी सोचा ही नहीं था लेकिन दैट आई हैव टू बी सो मच स्टेबल, बस मैंने किया है. लेकिन जो स्कूल का स्टूडेंट्स जो है उनके साथ में एक बॉन्डेज क्रिएट हो गया. और अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग जो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ बच्चों के साथ में, आई गेट टू नो सो मेनी थिंग्स बिकॉज दे आर यंग ग्रोइंग अप स्टूडेंट. वो मुझे ऐसा पसंद है कि आई फेल दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे यही चाहिए स्कूल में बच्चों के साथ. वो एक अलग सी हैप्पीनेस है जो मैं शायद वो फाइनेंशियली कभी फुलफिल नहीं हो सकता है.
0: दिस
2: इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टिल देयर.
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी. आपका कितने साल हो चुका है स्कूल में टीचिंग करने?
2: लगभग 30 to 31 इयर्स तो कंप्लीट हो गए.
0: दैट्स अ ह्यूज नंबर.
2: यस
0: जी जी. जैसे आपने टीचिंग जर्नी के बारे में भी बताया और थोड़ा बहुत आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हमारे साथ, आपको कैसा फील होता है आपके टीचिंग जर्नी या कहें कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको मैं कहूँ कि शेयर करें तो?
2: टीचिंग एक्सपीरियंस बोले तो आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल. सेंट एग्नेस में ऐसा होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है ना सभी स्कूल में प्राय एक ही है लेकिन हमारे स्कूल में कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन, तो उसके वगैरह स्पेलिंग एंड डिक्टेशंस और जनरल नॉलेज. तो मैं ये बात इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ये स्कूल जो है बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस सिर्फ सब्जेक्ट टीचिंग में नहीं है, वो वैल्यू एजुकेशन जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को एंड स्पेशली लाइक उस एजुकेशन में आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है और सीख भी लेते हैं क्योंकि दे आर चिल्ड्रन जो दिस इज अ टाइम लाइक वी नीड टू मोल्ड देम. सो अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टर्स का जो हमारे साथ जो रिलेशनशिप होते हैं ना टीचर लोगों के साथ में वो बहुत ही लाइक अलग किस्म से होते हैं. लाइक दिस इज नॉट लाइक वेरी प्रोफेशनल, यू गो टीच एंड कम बैक. टीचिंग के अलावा उस वहाँ जो एनवायरनमेंट होते हैं वह एनवायरनमेंट में आई मस्ट से दिस टू मच ऑफ काइंडनेस, लव और केयर, केयरिंग जो होता है ये सब मिला के एक फैमिली की तरह होते हैं. सो सेंट एग्नेस ने मुझे सिर्फ पढ़ाने नहीं सिखाया बट बल्कि एज अ ह्यूमन बींग हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग अलॉन्ग विथ ऑल्सो मोल्डिंग माई स्टूडेंट्स टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग इन लाइफ. सो एक्सपीरियंस तो वही है और इसके apart from that like jo functions वगैरह होते हैं there are lots and lots of memories and experience connected to my school. 30 long years तो कम बात नहीं है.
0: बिल्कुल
2: वही है
0: जी.
2: थैंक यू
0: जी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर हमें भी जी. जैसे आपने बताया कि टीचिंग जर्नी और आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी भी हैं बट आप फ्री टाइम कहें या कहें कि आपकी हॉबी क्या है?
2: हॉबी दरअसल आई लव रीडिंग बुक्स, किताब पे पढ़ना मुझे बहुत पसंद है. एज अ स्टूडेंट लाइफ ही ये मुझे हॉबी कल्टिवेट हुआ है. हमारे ज़माने में जब स्टूडेंट्स थे तो उसी टाइम में हमें एक लाइब्रेरी होते थे, वहाँ हफ्ते में एक किताब दिया जाता है नोवेल. तो वहाँ कुछ रूल्स थे कि एक हफ्ते में एक ही किताब आपको पढ़ना है, आफ्टर दैट अगले हफ्ते दूसरा किताब दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो हम जो स्टूडेंट थे तो हमारे बीच जो जितने भी एग्निशियंस है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएगी कि हम बिना बताए अथॉरिटी को हम बुक एक्सचेंज कर लेते, क्योंकि एक किताब एक दो दिन मैक्सिमम हम पढ़ लेते हैं, कभी कभी एक रात में हम पढ़ लेते हैं। वी आर सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, जैसे स्टार्टिंग हुआ एनिड ब्लाइटन से, फिर हार्डी बॉयज, ट्रिक्सी बेल्डन, नैन्सी ड्र्यू, उस जमाने के वही किताब हम पढ़ते थे। और अभी भी मैं कंटिन्यू लाइक आई रीड नॉवेल्स, तो बहुत सारे नॉवेल्स है जो मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ती हूँ इन माई फ्री टाइम। आई हार्डली गेट टाइम, इतना टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो एक अलग। और फिर म्यूजिक इज माई पैशन, मैं रविंद्र संगीत सुनती हूँ, वो भी मैं जब खाना वाना बनाती हूँ तो रविंद्र संगीत इज आई गेट कैरिड अवे, फिर पुराने गाने वो सब वही है।
0: बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि ये दोनों ही जो आपके हॉबीज़ है वो बहुत प्यारे हॉबीज़ है कहेंगे, कि आपके मेंटल ग्रोथ कहें या आपके एक माइंड शार्पनेस को काफ़ी बेहतर बनाता है। जी, जैसे हमारा ये वुमेन प्रोग्राम है, वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
2: ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। वुमेन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना लाइक इट्स अ चैलेंजिंग आई विल से। कभी कभी होता है कि हम ये बोलते हैं कि वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियली दे विल अर्न मनी, तो पैसा के लिए। मैं बोलूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ मेंटल सपोर्ट। वो होता है कि इस ज़माने में अगर वुमेन अपने आप को इंडिपेंडेंस नहीं देखती है
0: जी,
2: एक जगह जाकर, तो उसे बहुत सारी परेशानियाँ, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं। और दिस इज अ मैंस वर्ल्ड, हम बोलते हैं कि तो यह होता है कि they have to be dependent.
0: जी.
2: तो dependent होना और हर time mentally और उनको अगर support नहीं है mentally, उनको अगर happiness नहीं मिलती है, तो somehow वो जगह like survive करना इस दुनिया में जो बहुत ही tough है, it's very difficult. तो financially support के साथ वो अपनी family को support, माँ बाप के support तो करेंगे, वो तो अलग बात है, फिर after marriage हस्बैंड का फैमिली, लेकिन फॉर हर्सल अपनी खुशी के लिए, आप जीने के लिए, मैं ये बताऊंगी कि जीने के लिए, खुश रहने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यू गेट पावर, यू गेट सेटिस्फेक्शन, यू गेट थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन।
0: जी, बिल्कुल सही कहा है आपने और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बताए हैं, तो बिल्कुल अच्छा लगा सुनकर। जी, जैसे आप एक स्टूडेंट से, अभी आप एक टीचर भी हैं, तो स्टूडेंट लाइफ से ही फोकस रहना अपने लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है?
2: स्टूडेंट लाइफ में फोकस रहने के लिए अभी क्या है, सभी मतलब यही बोलेंगे कि करियर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं एक ही बात कहूँगी, एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखती हूँ कि एक स्टूडेंट की कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए
0: जी।
2: अगर हर तरफ से उसकी कैरेक्टर ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग में हम ज़्यादा फोकस क्यों देते हैं? अगर आपकी कैरेक्टर हर तरफ में, कैरेक्टर ये मतलब नहीं जो आप जो जील में आए वो करेंगे
0: जी, जी।
2: ऐसा होता है कि आप काइंडनेस, लाइफ की जो वैल्यू है, क्या गलत है क्या सही है, वो जानकर चलना, फिर अपने आप आई मीन करियर में फोकस हो जाता है। अगर आपके कैरेक्टर ठीक नहीं है, अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप करियर से हट जाएंगे, लाइक यू नॉट बी एबल टू फोकस मच ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तो आजकल के बच्चे देखते हैं कि हम दरअसल जो मदर्स पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वो समहाउ वो लुप्त हो जा रही है, मतलब नहीं है। दैट्स बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ दे आर नॉट फोकसिंग हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। और इसके लिए मैं कहूँगी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक ही बात जरूरी है, वो है कि रिलीजियस इन टच। छोटे से मैंने बच्चों को You have to be in touch with the religious, like that's the responsibility of the parents
0: Jee,
2: to
0: bilkul.
2: take the child and get in touch with whatever religion they belong. When you are in touch with the religion, automatically after character mold hogi, you will be able to focus in your life, your career as a good human being. So I don't know, like dusro ke baat mein bol nahi sakti, lekin mere liye ek bachche ke career focus ke liye she should be character and religious, touch with religion.
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने और एग्जैक्टली आज के टाइम पे ये देखा गया है जैसे आपने कहा है। एंड चाहूँगी कि जो भी लोग आज सुन रहे हैं आपकी बातें सुन के, वो ये सब अपने दिमाग में रखें और अपने रिलीजन के साथ टच में रहें।
2: धन्यवाद
0: जी। एज अ मदर आपके लाइफ में कितना कुछ चेंज हुआ है?
2: एज अ मदर मैं फिर ये कहूँगी कि ये चैलेंज तो नहीं है, Because motherhood is a very beautiful thing. और मैं grateful हूँ like मुझे एक बेटी है जो छोटा से मैं उसको गाइडेंस जो देना है मैं अभी जो कहा कैरेक्टर बिल्डिंग फिर रिलीजियस टच में रखी हूँ उसके बाद आई बिलीव इन गिविंग हर फ्रीडम फ्रीडम इतना भी फ्रीडम नहीं कि जो क्या सही है को गलत है वो ना समझ पाए लाइक दैट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई पार्ट आई मैनिफेस्टेड वी मैनिफेस्टेड लेकिन मैं क्यों बोलूँ उसके पापा हम दोनों ने मैनिफेस्ट जो चाहिए हमने दिए है और अभी भी मैं यकीन करती हूँ अगर वो थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए तो वो अपने आप समझ सकेगी कि मैं क्या कर रही हूँ अगर हमेशा बॉन्डेज में रखते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चा आपके पीठ पीछे आपको बिना बताए ऐसा कुछ करेंगे जो बाद में जाके वो आपको बड़ा सा धक्का भी लग सकता है तो आपके सामने ही करें वो फ्रीडम मैंने दे दी तो मैंने बताया भी है ये आपकी लाइफ है मेरी लाइफ मैंने जी ली है आपके पापा की लाइफ पापा ने जी ली अभी आपकी लाइफ है आपको क्या पसंद है आपको करना है वो भी बता के करना है क्योंकि इस ज़माने में दे आर क्या बोलती है ये लोगों को जेंजी ना क्या बोलती है ये लोग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उन लोगों का समझ उनको समझ पाने के लिए यू हैव टू गो टू द लेवल टू अंडरस्टैंड देम सो माई एज अ मदरहुड आई हैव लिव्ड माई लाइफ आई डिड माई बेस्ट मैंने जो कुछ चाहिए मेरी बेटी को दी है और शी इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रोमिसिंग चाइल्ड मतलब एज अ स्टूडेंट स्कूल में बहुत ही बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया शी वॉज ट्वाइस कल्चरल स्कूल कैप्टन डिबेट कैप्टन फिर अभी भी लाइफ में वो जो करना चाहती है इंजीनियरिंग में जाना चाहती है लाइक वी आर सपोर्टिंग हर तो वही गाड़ी भी सीखना है वो भी सीख ली बाइक भी स्कूटी भी सीखना है वो भी सीख ली फ्रॉम ऑल साइड्स वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कुड फॉर हर या एज अ गुड ह्यूमन बींग हम बनाना चाहते हैं शायद और लाइफ को एंजॉय करके तो वही
0: जी बिल्कुल जी आपके सोच बहुत ही अच्छी है एंड मैं चाहूंगी कि जैसे आपने अपनी बेटी को जिस तरीके से फ्रीडम कहे जैसे भी आपने कहा कि बॉन्डेज में रखने से कुछ नहीं होता,
2: नहीं होता
0: हाँ। जी वैसे ही सबकी सोच रहे हैं तो आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ छुपा के कोई कुछ करेगा
2: हाँ, हाँ।
0: जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है जी जैसे आपने बताया कि जी जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल से जुड़ी हुई है
2: जी।
0: आप बैलेंस कैसे करती है घर और वर्क को
2: सच कहे तो त्रिशा ऐसा है कि मैंने लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में या मंदिर मंदिर में जो सेक्रेटरी हो बा दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी हूँ मैं सच कहूँ तो मैं चाहती नहीं थी क्योंकि ऐसा है आई एम वेरी इंट्रोवर्ट में घर में स्कूल घर माई वर्ल्ड वही है लेकिन वो हो जाता है पता नहीं क्यों मे बी इज गॉड्स ब्लेसिंग और क्या कहे सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जेनरसिटी ऑफ गॉड तो जो मुझे बुलाया जाता है एंड जब मैं काम मुझे मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के काम करना है कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो मैं 100% देती हूँ इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि अपना जो ड्यूटी है अपना जो कर्म है अगर आप वो अच्छे से निभाओगे तो समहाउ यूनिवर्स आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो मैं ये आपने पूछा है कि मैं बैलेंस कैसे करती हूँ बैलेंस मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि आई लव माय फैमिली सो मच मैं और स्कूल में इतना आई लव माय स्कूल माय फैमिली और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो अगर वह जो बंगाली में कहते हैं भालोबाशा जो जो लव होता है अगर है तो वो हो जाता है
0: जी बिल्कुल
2: या
0: जी बिल्कुल सही कहा जो काम आप करते हो वो काम में अगर आप पसंद करते हो उस चीज को तो वो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ बैलेंस कर ही लेते हो
2: हाँ,
0: जी बिल्कुल बहुत सही कहा है आपने जी आप अभी तक में आपके बहुत सारे मेमोरीज बन चुके होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आप शेयर करना चाहती भी होंगी मैं चाहूँगी कि उनमें से कोई भी एक मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करें
2: दरअसल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं मेमोरीज मैं हमेशा कलेक्ट करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ और मेरी एक ही उसूल है लाइफ में पॉजिटिविटी तो पॉजिटिव रहने के लिए वो है कि मैं थोड़ा अपनी दादी के बारे में बोलना चाहती हूँ माय फादर्स मदर तो मैं अपनी दादी के साथ बहुत ही क्लोज थी अभी तो वो नहीं है लेकिन फिर भी मैं हर टाइम कभी मुश्किल में पड़ती हूँ माय गॉड इज़ देयर लेकिन मैं दादी को याद करती हूँ तो ये एक मेमोरी है जो दादी उस टाइम में 80 above years तो वो क्या है कि सुई सुता से वो जो स्टिचिंग वगैरह होते हैं तो
0: जी,
2: वो
0: जी.
2: करते थे उसी ज़माने में बस्ता व कपड़ा के वन मोमेंट में बता रही हूँ तो दादी हमेशा मुझे बोलती कि वो जो सुई है सुता जो है जो थ्रेड जो है वो
0: जी, जी.
2: सुई में डालने के लिए तो हमेशा तो मैं हमेशा चिड़ची जाती हूँ ये क्यों तुम्हें करना पड़ता है आप क्यों कर रही है इतना सारा तो है घर में जरूरत नहीं है वे भी इतना अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही फिर बट शी नेवर इज टू रेस्पेक्ट तो दादी मुझे एक ही बात कहा एक दिन, उन्होंने बोला कि देखो मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ये पसंद है, बैठ के गपशप मारने के बदले ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे ऐसा फीलिंग्स देता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये एक मेमोरी है और बहुत सारी बातें बताए, तो दैट थिंग आई एम स्टिल कैरिंग विथ मी। जो सच में अगर कुछ पसंद है आपको, कुछ करना चाहते हैं आप, तो उसको करना चाहिए। आप वो एज हो जो भी हो, उसे देखना नहीं है।
0: जी
2: है,
0: बिल्कुल। हाँ। जी बहुत ही प्यारा सा मोमेंट आपने शेयर किया है और उससे काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला हम सभी को।
2: धन्यवाद कृष्णा
0: जी, आज जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ हमें सिखाया है, समझाया है। मैं फिर भी चाहूँगी कि आज जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, सभी के लिए आप अपनी ओर से एक मैसेज शेयर कीजिए।
2: एक मैसेज मुझे शेयर करना है, तो मैं यही बोलूँगी कि अपना कर्म जो है, आपका ड्यूटी जो है, वो सही तरह से करें। आप किसी भी पोजीशन में हो, छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, लेकिन सही तरीके से अगर काम करोगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि वो, मैं शायद ज़्यादा रिलीजियस हूँ, लेकिन आई बिलीव यूनिवर्स आपको देख रहे, तो आप किसी को ठगे नहीं और ट्रूथफुल रहे, ऑनेस्टी से आप चले लाइफ में। आप समहाउ अगर रिकॉग्निशन नहीं भी मिला आपको, लेकिन सेटिस्फेक्शन और एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे से सो तो पाएंगे।
0: जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज शेयर किया है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया है जो हर एक व्यक्ति अपने अंदर रखते हैं लेकिन शेयर नहीं करता है
2: जी,
0: शायद।
2: जी।
0: मदरहुड से लेकर टीचिंग जर्नी से लेकर स्टूडेंट लाइफ, एवरीथिंग आपने बताया हमें, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद त्रिशा, थैंक यू सो मच।
0: जी, आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और आप अपने विचार में ये बदलाव लाएंगे और आज के इस कार्यक्रम से आप बहुत कुछ सीख भी पाए होंगे। और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा लेने।
1: कौन हो तुम?
0: जमाना बदल गया है, मगर इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके। मामा जी, मैं हूं रजीत राय उर्फ राजू। आई एम सॉरी बच्चों, मुझे आने में जरा देर हो गई, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है तुम्हारा राजू चाचा। बोलो क्या प्रोग्राम है?

0: दीदी वैसे आज का क्या प्रोग्राम है?
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वुमेन्स प्रोग्राम, प्रस्तुतकर्ता थी तृष्णा चक्रवर्ती। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है समाचार का, सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। अब समय हो गया है अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। आज का दिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं एक कविता।

श्रोताओं, इतिहास केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का माध्यम भी है। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने समाज, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति और मानव सभ्यता की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जानते हैं 2 अगस्त के दिन भारत और विश्व के इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई हैं। 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर अधिकांश प्रतिनिधियों ने आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। 1870 लंदन में दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे टावर सबवे जनता के लिए खोली गई। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने लक्जमबर्ग पर कब्जा किया। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आयोजित पोट्सडेम सम्मेलन का समापन हुआ। 1998 अफ्रीका में दूसरे कांगो युद्ध आरंभ हुआ, जो आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े भीषण संघर्ष में से एक माना जाता है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 1947 स्वतंत्रता प्राप्त से ठीक पहले देश में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची और स्वतंत्र भारत के गठन की प्रक्रिया तेज हुई। 1984 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने स्वदेशी तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की, जिसे आगे चलकर अंतरिक्ष अनुसंधान को नई गति प्रदान की। 1861 प्रफुल्ल चंद्र राय प्रसिद्ध भारतीय रसायन शास्त्री, शिक्षाविद, उद्योगपति और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के संस्थापक। उन्होंने आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। 1899 शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और संपादक। उन्होंने हिंदी गद्य और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दी है। 1924 जेम्स बॉल्डविन प्रसिद्ध अमरीकी उपन्यासकार, निबंधकार और सामाजिक चिंतक, जिन्होंने नस्लीय समानता और मानवाधिकारों पर प्रभावशाली लेखन किया।

श्रोताओं, आज अगस्त की दूसरी तारीख है और रविवार भी है। आज ही के दिन मित्रता दिवस मनाया जाता है। मित्रता दिवस हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। ये दिन सच्ची दोस्ती, विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान का प्रतीक है। एक सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है और सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। मित्रता केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, सहयोग करने, जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहने का नाम है। इस दिन लोग अपने मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं, मित्रता बैंड बांधते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ये संदेश देती है कि जीवन में सच्चे मित्र सबसे अनमोल उपहार होते हैं और उनकी कद्र हमेशा करनी चाहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लोफर फिल्म का ये गाना। अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और सपना की आवाज़ में बंधन फिल्म का ये गीत। इसी के साथ आज का वुमेन्स प्रोग्राम श्रोताओं यहीं पर, आज का दिन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जो है चिल्ड्रंस प्रोग्राम।

आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

तो श्रोताओं, आज चिल्ड्रंस प्रोग्राम में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मी की लंबी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल वापस लौटने का समय हो गया है, तो गर्मी की इन लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर आप विद्यालयों के आंगन में बच्चों की चहल पहल फिर से सुनाई देने लगेंगी। कई सप्ताह तक घरों में खेलकूद, घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलने और अपने पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताने के बाद अब बच्चों के जीवन में फिर से अनुशासन, नियमित दिनचर्या और सीखने का नया अध्याय शुरू हो रहा है। स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही वे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छे संस्कार सीखते हैं, अनुशासन का महत्व समझते हैं, मित्रता का मूल्य जानते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। हर नया शैक्षणिक सत्र अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा होने का अवसर देती है। इस दौरान कुछ बच्चे नई जगहों की यात्रा करते हैं, कुछ अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ समय बिताते हैं, तो कुछ चित्रकला, संगीत, नृत्य, खेलकूद, पुस्तक पठन या कंप्यूटर जैसी नई गतिविधियां सीखते हैं। ये अनुभव बच्चों के ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अब समय है इन अनुभवों के साथ लेकर फिर से विद्यालय की ओर बढ़ने का। शुरुआत में कुछ बच्चों को पढ़ाई की दिनचर्या में लौटने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास, समय का सही प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से वे सहज हो जाते हैं। स्कूल खुलने का अर्थ केवल कक्षाएं शुरू होना ही नहीं, बल्कि ये जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। समय पर उठना, पौष्टिक नाश्ता करना, स्वच्छ और साफ यूनिफॉर्म पहनना, विद्यालय समय पर पहुंचना, कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ना, गृह कार्य समय पर पूरा करना और शिक्षकों का सम्मान करना, ये सभी आदतें बच्चों को एक अच्छा विद्यार्थी और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय में खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विज्ञान प्रदर्शनियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बच्चों को केवल अंकों तक सीमित ना रखकर उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अभिभावकों की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनाने, पर्याप्त नींद लेने, पौष्टिक भोजन करने और पढ़ाई के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने में परिवार का सहयोग बच्चों की सफलता की मजबूत नींव बनता है। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने तक सीमित नहीं है, वे बच्चों के मार्गदर्शक, प्रेरक और संरक्षण होते हैं। उनकी प्रेरणा और सहयोग से बच्चे अपने आत्मविश्वास को विकसित करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। ये अवसर है पुराने अनुभवों को सीख लेकर नए लक्ष्य निर्धारित करने का, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का और अपने सपनों को साकार करने का। आइए जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के बाद आप वापस स्कूल लौट रहे हैं, तो जैसा कि हमने बताया, आप उन पर ध्यान दें और अपना स्कूल का समय अपने दोस्तों के साथ पढ़ें और आनंद भी लें।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। अगला गीत सुनते हैं निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ में, बर्फी फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ बच्चों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो चला है समाचार प्रभात का। सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब

0: आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से

0: मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। अब समय है देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का। सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। इसी के साथ ये यहीं समाप्त होता है। समय हो गया है समाचारों का। सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। अब समय हो गया है सिरों की रंगोली कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एसपी बाला सुब्रमण्यन की आवाज़ में कुछ गीत।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खलमा कार्यक्रम। अब सुनते हैं शांखल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आधुनिक गीत नीलल वंग शांखल और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शांखल कार्यक्रम में आधुनिक गीत, नीलवंग शांखल और उनके साथियों की आवाज़ में। अब समय है जयंतिया कार्यक्रम का, सुनते हैं भक्ति गीत मेलाम भलांग प्रंगे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे जनता कार्यक्रम में भक्ति गीत मलाम बलांग परंगे और उनके साथियों की आवाज़ में। अब समय है व्यते कार्यक्रम का, सुनते हैं आधुनिक गीत स्टेफन ललम्पुया नम्पुई और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्यते कार्यक्रम में स्टेफन लेलोम्पुया नम्पुई और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यही समाप्त होता है और समय हो गया है विविध भारती के कार्यक्रमों को शुरू करने का। आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और इसके बीचों बीच आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।
1: मंदाकिनी जोशी ने, आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे

0: ये जैसे गया,
1: हाँ
0: अब आंखों की मनी सनम को बहुत भा गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है
1: हाँ
0: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना,
1: हाँ
0: डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, वो क्लिक में आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
1: बिल्कुल
0: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे,
1: जी
0: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ, आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है। इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है, तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता।
1: नहीं आती है। जी।
0: जी
1: तो कोई गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था? उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था?
0: एक
1: या
0: दिन
1: एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की
0: एक
1: रिकॉर्डिंग
0: दिन
1: में?
0: एक दिन
1: अच्छा।
0: एक दिन एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11-11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं।
1: जी
0: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
1: हाँ जी
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए हैं अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था,
1: जी
0: लाइव लाइव ऑर्केस्ट्रा भी, तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
1: जी
0: कृपा होती है,
1: जी
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और पेमिला जी मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पामिला
0: हाँ
1: जी।
0: पेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है,
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यजीन बोला बोलो नहीं नहीं बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या आप चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा।

0: तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम, हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है, म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए,
1: बहुत
0: तानसेन
1: बढ़िया,
0: जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात है। और बहुत शानदार गाना गाया उस
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गा
1: में, जो सैफ अली साहब की आवाज थी
0: सूट हुई, और
1: बिल्कुल सूट हुई।
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, मगर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ।
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ, मतलब मगर वो पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोरदा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि बस ये आइडियल चीज़ें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे, और
0: और आर डी बर्मन साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफ़ी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफ़ी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोला नहीं, सेन साहब के लड़के बहुत मतलब वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए, अमित नहीं आए। इतने में अमित नीचे आए तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं ना, ये आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके बाद
0: सकता।
1: में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
0: बहुत सुंदर
1: था
0: गाना।
1: कदम कदम पर इम्तहां, हर इम्तहां से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था, जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई
1: वाह
0: बुझाए,
1: वाह सुंदर।
0: हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफ़ी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवॉर्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ
0: गोविंद
1: आपने
0: जी के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफ़ी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफ़ी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था, इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रे तूने, रफ़ी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है, तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, और सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही क्या
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं ज़रूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहाँ तक पहुँचाते, क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहाँ थोड़ा सा आवाज़ 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का ज़माना था, रियाज का ज़माना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज़ 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो,
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हों, सोनू जी रहे हों, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं,
0: जी
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए। और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं, वो
1: क्योंकि
0: बात नहीं है, वो
1: वो उनको
0: रिस्पेक्ट
1: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
0: और
1: कि
0: कला
1: यार
0: के
1: वहाँ
0: प्रति,
1: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
0: और
1: करना है,
0: कला के प्रति
1: हाँ
0: समर्पण।
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं। कौन
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है
0: तुझे चाहना मेरा काम
1: काम
0: है,
1: है। जी
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
1: जी
0: दिलीप
1: जी
0: सेन
1: जी
0: साहब
1: जी
0: ये,
1: जी
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: का परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है।
1: नहीं,
0: और
1: हम केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं। मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया।
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को। हम मेरी चोली के टूटे सब धागे, अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास की नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
0: जी, चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला,
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं,
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर, जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे भी
0: गए
1: आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की।
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम ज़ेर ज़बर तो हो, आप तलफ़्फ़ुज़ तो सही करा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सिंगर के लिए भी ज़रूरी है, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक दो चार पाँच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पाँच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कोर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए। जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए, क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत हैं उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी, बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: हो। मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रवाह वता वितस्थले वीरो विलम विलम भूतम भुदंग तुंग मार जटा टविगल ज्वल प्रवाह वपा वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी,
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेटे दिल अंगूर के झपेटे दिल दुष्ट को दपेटे जरा पेटे चकला न बजे नक चरा तो न तो को तो कटा कटे की रिसे न पटा पटे पटी पटी पाट कभी को के लकार की ले जो है जे लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे तनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंड दंड न उमन न सुखन न है कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी चंडी पति सो कमंडी कुल खानी दिने कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ए जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीज़ों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों

0: के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है
1: जी
0: तो उसे छिपाते हैं।
1: जी
0: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में,
1: बिल्कुल
0: मानती हूँ,
1: बिल्कुल, और चर्चित भी
0: और
1: किया है।
0: मेरी फेवरेट भी है। लेकिन
1: हाँ
0: जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है,
1: जी
0: मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति,
1: जी
0: टू टेल और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से, इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो, एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसे कहते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से, इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है, इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज़्यादा खराब होता है, कमज़ोर होता है, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं, और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
2: इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप साइंस लेते हैं, सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं।
1: जी
2: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे हैं साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज़ नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं, तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है, तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहा है। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसके फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है, तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है, तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी सैड पार्ट ऑन आवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की ज़रूरत पड़े। मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है, तो
1: जी
2: उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए।
1: जी
2: अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है, आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ कैसे करते हैं, लेज़र कैसे यूज़ करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, एमआरआई

0: मशीन क्या होती है, सिटी स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
1: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है, तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है?
0: अगेन यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं, तो आपको उनका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कम करना चाहिए। और अगर उनको बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11th 12th के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज़्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूँ तो 11th 12th का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ्स है, लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन ख़त्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है। बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है, उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तेफाक रखूँगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको।
1: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
2: सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आई एम श्योर कि काफ़ी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल,
2: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज़ की वजह से पैनिक अटैक आता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
1: जी,
2: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं, और मैं बच्चों की तरफ हूँ बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में। देर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर। एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
2: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम। वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो। तो आई थिंक समवेयर देर इज, मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। और आप कहेंगे कि द 3 Idiots फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म, That really depicted कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो. एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये ज़रूरी है. क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
1: जी.
2: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है. हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब ज़माना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है.
1: बिल्कुल,
2: देर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है. वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है. आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते. तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है.
1: जी जी,
2: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120. किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है.
1: जी,
2: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ. बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया. ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है. आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो. और अक्सर मैं उनके
1: सही बात है बिल्कुल.
2: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है. So I'm feeling that the child is a poor victim of circumstances.
1: जी.
2: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे. आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं. और वो नहीं बता पाते हैं.
1: क्या बात है, ये तो
2: सोचने लगते हैं.
1: बिल्कुल.
2: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए तो दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं कि आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है. और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा. तो मुझे ये करना पड़ता है.
1: तो एक नई बात सामने आई है. सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए. प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे.
0: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं तो मैं जब तक जानता हूँ मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 years plus 50 years plus प्रोफेसर हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे. तो मुझे उसके जैसे बच्चे बन के पढ़ाना होता है. और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं. डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकेंड का होता है और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकेंड में शांत हो जाएंगे. एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम योर एकेडमिक फादर. तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ. तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूँ और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेंट जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा.
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां. ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर?
0: डेफिनेटली है. एग्जांपल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है. मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था. मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला. पापा एकदम पैट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश. इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंडफादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो। तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था। तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन
1: जी
0: वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग।
1: जी
0: तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है। तो
1: जी
0: जो बच्चे 8th 9th में भी हैं अभी, और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है।
1: ओहो
0: तो आपका फियर अगर 8th 9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा, फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं।
1: जी
0: अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो वो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे। अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नैन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: मैं तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज़ पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तब भी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स इज मैथ्स,
1: क्या
0: न्यूटन
1: बात
0: रोट
1: है
0: द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली
1: जी
0: अ मैथमेटिशियन। आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज़ प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट हैं वो लॉ कर रही हैं, और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
3: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज़ तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। यस
2: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज़ एक्चुअली एक तरह की एंजाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंजाइटी और फियर में एक फ़र्क है। एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जहाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप जंगल से जा रहे हैं, वहाँ कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंजाइटी कहते हैं।
1: जी
2: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
1: बिल्कुल
2: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूँ, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं, और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
1: क्या बात है, बहुत
2: तो
1: सही बात।
2: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो. एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन. तो आपको ये जहन में रखना ज़रूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूँगी. एंड कीप योर सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड. मैं ये नहीं, प्लान बी होना ज़रूरी है, प्लान सी होना भी ज़रूरी है आजकल. तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस. और इफ़ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा. ये सिर्फ 60+ के लिए नहीं है, आज के ज़माने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है. इफ़ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक.
1: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं.
0: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ. सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है तो वो उसे होता ही नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज़ नॉट मोर देन 6-7 आवर्स. कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज़्यादा नहीं बिठा सकते. आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए. तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें, अगर कोई बच्चा सुबह 1-2 बजे पढ़ता है तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है. दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट. तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में आ जाए वो हो गए. 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए. आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए. इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल. तो मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज़ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो देर इज़ नो रीज़न दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट. When you study it out of pressure and when you study it out of entertainment, definitely आपके पढ़ने में फ़र्क होता है. See, as far as brain is concerned, some people are gifted. Let us not compare that way कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है. ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट. कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से जैसे, तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है. तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है. कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज़ पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज़ करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है.
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं, वेदांत, परिचय दें वेदांत और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछें.
4: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ. तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं. और बात आती है अपस्किलिंग, तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं एक और नई चीज़ मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज़ ढंग से कर नहीं पाते. तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ. तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
2: आप इस जनरेशन के हो इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज़ एक मॉल की तरह है. हम जब छोटे थे ना तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे. आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कन्फ्यूजन इज़ इंक्रीजिंग. लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, है ना. लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए लेकिन आपको डिसीशन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर हैं. तो इसमें मैं कहूँगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूँगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज़्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूँ एज अ काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
5: क्या बात
1: है? सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात।
2: वरना क्या हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुँच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए, और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल। तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना ज़रूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो AI प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज, अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा? तो दोनों नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूँ इसका मतलब अच्छा ही है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूँगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन। छोटी छोटी बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो आपके लिए, कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज़ रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इम्पॉर्टेंट।
1: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत ज़रूरी है, हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा ख़ास तौर से ज़रूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो NCERT की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करें कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सकें।
0: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में 2 चैप्टर पे, बाद में 4 चैप्टर पे। ना एज़ फार एज़ NCERT बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या JEE मेंस हो, उसका बेसिक बुक ही NCERT है। लेकिन NCERT बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं, बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें. अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप एक मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेडब्ल्यूई के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पर प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठें, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं आप कभी भी हमें फ़ोन करिए 7 to 3 या तो 7 to 4, हम रिलीजियसली फ़ोन को हाथ नहीं लगाते. बिकॉज सीधी सी बातें बच्चा जो देखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए. तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं आप खुद अपना मोबाइल फ़ोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग. सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू नो यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यू उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूँ कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस. यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे साथ में पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना था. मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देयर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा मेरा इंटरनल हीट उतना है. तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 years back, 25 years back, 20 years back. अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज़्यादा रूटीन हो चुका है, हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड्स यूज़ करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो. मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज़ नई आती है, कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फ़ोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं. तो जैसे आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरल उसके बारे में सीखना भी होता है. इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिज़ाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो. एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीज़ें ले लो, वो सब में फिजिक्स है. वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करना पसंद है, लेकिन वो चीज़ों के बारे में आपको सीखना नहीं है. मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है. आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको.
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं.
3: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ,
5: तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
2: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीख करने के लिए, या आपका अटेंशन ज़्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंगर पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये
1: बिल्कुल
2: माइंड ऐसा है, लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन,
1: जी।
2: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही हैं,
1: जी।
2: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है, नरसिम्हाजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हाजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसा
6: हिंसात्मक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं, और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहाँ से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
2: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत, मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं, इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज़ इनके साथ पॉसिबली ये है कि वॉट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ़ यू एक्चुअली सी विदाउट रीज़न किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी, अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहाँ पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
2: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीशन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है और विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना ज़रूरी है।
6: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजें, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
2: इस मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहाँ टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज़ अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेज कर मदद लेना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू, क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना ईजी नहीं है, और ये फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं हैं कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल के लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहाँ पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूँ, द ओनली वे टू नो इज़ फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है जी, और वहाँ वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
7: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
2: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलीडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर, या फिर कुछ देयर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहाँ वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो, अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं? बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत ईजी हो जाता है, है ना? कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है। और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूँ,
1: बिल्कुल,
2: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल,
2: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो, ये जो फोन है ना इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो, इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो, स्टीव जॉब्स करते थे। व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है, बट एक बात याद रखना, हर चीज़ प्लान के मुताबिक चले ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूँगा मैं। बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको।
0: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है, इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है, क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूँ, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूँ, तो आई हैव टू बी माय ओन एडवाइजर। तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीज़ें मोबाइल में स्टोर करते हैं नोट्स करके, मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसके बाजू में स्माइली करता हूँ कि नैन वेल डन। वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, राइट। यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड। घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आपको स्माइली दो, हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है। हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही। एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग। मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पैटी थिंग्स इन लाइफ।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
3: मेरी बेटी है, 6 साल की है, सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफ़ी बड़े बच्चों के लिए था ये सब, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़ और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग। ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने पहले तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में, वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत। तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना, वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके, मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल। तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे उसको लगता है कि उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है। कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
2: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, कोई पूछते भी नहीं है।
1: वो ज्यादा मुश्किल है,
2: वो ज्यादा मुश्किल है। सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है। तो मैं कहूँगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना ये सही नहीं है,
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि आपने देखा नहीं ये भूत को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना?
1: बिल्कुल सही बात है।
2: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है, लेकिन जहाँ तक जवाब देने का सवाल है आई वुड से बी ऑनेस्ट, बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए। उतना ही दो जितना वो समझ सके, एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग, वेरी गुड।
1: बिल्कुल,
8: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक विविध भारती। अभी जो बात चल रही थी उससे जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है,
2: डेफिनेटली
8: हाँ, तो उसकी उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
2: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
8: अच्छा,
2: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है, वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन, तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है। और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। I can't create a war between husband wife after counseling session.
1: ये बहुत सही बात कही
2: आपने. That's not possible. तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और second session आए.
1: जी.
2: तो my challenge is getting them for the second session. पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं. तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफ स्टाइल क्या है. उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग.
1: जी. एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा.
9: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है. नाउ आई एम इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं?
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे. कहिए नयन सर, बताइए. आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है.
0: भले आज मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. मुझे सिविक्स कभी पहले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स जाते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था. तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे. एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो. तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है. तो वो सारी चीज़ें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी. यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस. राइट. सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो. ओके.
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया. दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है. अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं. तो विभा जी अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है.
10: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी. इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा. सच कहूँ तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊँ. इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है. फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिज़िक्स सीखना चाहती हूँ.
1: क्या बात.
10: और आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिज़िक्स इज़ राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है. डॉक्टर रोज़ा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने. मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ. तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया.
1: क्या बात है. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
10: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया. दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं. हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है. नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है. हम भी कोई चीज़ हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज़ हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है. पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी.
1: जी.
10: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी. इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी. तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोज़ा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी एक फ़िल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं? तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी जी।
10: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी, क्या बात
10: तो
1: है, बहुत
10: अगर वो समझदार हैं तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
11: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
12: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और तत्पश्चात हम आपको फिर से ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो

0: राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सभी को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। और एक बार फिर से 1 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।
2: हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओत प्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है, बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफ़र आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। तत्पश्चात हम आपको फिर से ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं

0: ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सभी को एक बार फिर से ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां विविध भारत के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। और 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज़। तत्पश्चात आप सुनेंगे दोपहर समाचार। समय रहेगा 2:15 का रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारी एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आज़ादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आज़ादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती हैं। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था, वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज़ और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज़ दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के ज़रिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ ना रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार, इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियाँ ये थीं। साथ ही एक साथी ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज़ कलम लेकर बैठता हूँ तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पर, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में फ़ोन रखिए और किताबें उठाइए, ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले, अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते।

0: मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफ़र के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुँचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज़ पर लिख दें और उस कागज़ को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था सर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज़ पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगा कर उसे मिटा

सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, और तत्पश्चात 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचार का।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
1: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें

0: venture into the sea today. We have a report.
1: 33 dams in the state are currently on high alert. More than 76% of water has been stored in the state's lifeline, the Sardar Sarovar Narmada Dam. 17 NDRF and 33 SDRF teams have been deployed in Gujarat to deal with any situation. So far, 70,040 people have been evacuated and 9,680 people have been rescued in the state. NDRF, SDRF and Gujarat police personnel rescued about 55 people trapped in fields in Juna, Malaniyad and Sukhpur villages of Halwa Taluka in Morbi and shifted them to a safe place. Pravesh Adiyacha, Akashwani News, Ahmedabad.
0: The United States has agreed to hold off a planned military attack on Iran after Tehran and several West Asian countries requested a pause, claiming that the framework of a potential agreement had been reached. In a social media post, U.S. President Donald Trump today said the U.S. remained fully prepared for military action but had decided to suspend the planned strike to allow diplomacy to move forward. He said Iran and other countries in the West Asia had urged Washington to delay military action because the perimeters of a deal has been agreed to. According to Trump, the proposed agreement would include the immediate, complete and total opening of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Iran had not officially confirmed the claims made by the U.S. president. Indian Ambassador to the U.S. Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article published in a news magazine, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. On to sports. In badminton, India's Tanvi Sharma claimed her maiden BWF World Tour title, defeating Vietnam six-seeded Nguyen Thu Linh 21-16-21-16 to win the Taipei Open Super Women's Singles title today. 17-year-old Tanvi became the youngest Taipei Open champion, surpassing Taiwan's Tai Tzu Ying. She is also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Gangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge, while Ronaldo Lak Tong Jam will compete in the men's 1000m time trial in track cycling. Para track cycling events are also scheduled on the closing day. A report.
2: India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pankaj secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para-athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5,000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parekh for Akashwani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
3: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
4: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए। ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
3: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इश्रूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
7: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सुमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
3: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मीडिया न्यूज। तत्पश्चात आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही दोपहर समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सभी को एक बार फिर से ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।

उड़न खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज़ आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: आई राधे आई राधे, जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उठ, नीरत करत उठ, हिरत फिरत उठ, हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन, दिग दिग नादि दिग नादि दिग दिग धो दिग दिग धो दिग दिग।

बहकी रुनक झुनक जब चुड़िया खनकी झुनक झुनक जब चुड़िया खनकी लहद लहद ओडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन दादा किट झट झट झट झड़न मचिक तक झगन का किट तक।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है? इस गीत को जिन्होंने पसंद फरमाइश की है, साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्नति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके ख़तों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने ख़त भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन ख़तों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए

सत्य वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा, और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: দাদা জান কি জান, আও বলো বেটে রুখসানা।
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवा खोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
0: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
1: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
0: अपने अपने घर।
1: मगर क्यों?
0: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
1: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान।
0: हाँ।
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यहीं खत्म करें।
0: हाँ।
1: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान,
0: जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
0: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमना में आबे हयात बहता है। जमना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग,
0: जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया, और जमना के रास्ते किले में तशरीफ लाए, और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया।

0: पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा है सामने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए हैं।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहाँ कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज हैं हम।
2: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहाँ कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे आलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाईं, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहाँ से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूँ।

0: कौन? लौट आए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आलीजाह की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आलीजाह? मकबरे में पनाह लेने वाला आलीजाह कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेस बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे, म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाएं, तशरीफ ले चलें।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा, कब मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में
4: हम

0: होए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
2: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
1: वो आ गए।
2: तुम हंस रहे हो? कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
2: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
2: हम आखिरी दाव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्त खान को बुलवाएं।
4: बक्ट कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
2: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
2: मत कर इलाही बख्श।
4: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
2: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
2: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत? मर्डर का इज्जत? तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
2: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know बादशाह? तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
2: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
4: आई नो हम हेटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
3: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है? क्या रख गया है ये फिरंगी इस तख्त में?
2: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तश्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गईं। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, ये हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, जरूर लेगा। आज नहीं तो कल, आज

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा।
6: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एक बार फिर से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
8: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
7: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
8: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
7: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। प्रभावित इलाकों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिंगली वेंकैया को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग में अवतार सिंह और यश घंगास को हार का सामना करना पड़ा। साइकिलिंग में हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार भी पुरुषों की 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हावलोंग केंद्र है। आप सभी को मैं अर्पिता ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे लगातार शाम 5 बजे तक।

0: उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो। दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी, सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही। लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष औसत करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, and that was it, that was the last conversation we had. फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा। मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं।
1: बाय।
0: और एक दिलचस्प बात यह कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं
1: जी,
0: धुआं
1: जी,
0: से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो
1: अच्छा,
0: है अब आगे
1: अच्छा,
0: बढ़ाती
1: अच्छा।
0: है, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहां चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक
1: अरे
0: तिलस्म है।
1: क्या बात है, क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला।
0: जी जी गौरव अवार्ड।
1: जी
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी
1: नहीं,
0: तक
1: नहीं,
0: बधाई
1: कोई
0: नहीं
1: बात
0: दी,
1: नहीं,
0: उसकी
1: कोई
0: भी
1: बात
0: बधाई
1: नहीं।
0: देता
1: तो
0: हूँ।
1: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए। तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो
0: अद्भुत।
1: मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की, अच्छी अच्छी ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन
0: जी
1: नहीं लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये भी
0: बिल्कुल।
1: कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा सा किस्सा सुना, क्योंकि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह।
1: प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
0: क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: गुल आनंद भी वहाँ थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हाँ और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह कह के, उन्होंने कहा कि सही आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो

0: उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क। हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी, बस बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी, तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं
1: जी,
0: फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये
0: और
1: कोई रियल
0: तीन
1: लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च
1: जी
0: डाला। अच्छा।
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, या दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई, लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो लेकिन ऐसे करो प्लीज, मुझे 1 हफ्ता और दे दो। दे दिया। उन्होंने कहा, फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था, हम
1: योगदान,
0: योगदान,
1: कंट्रीब्यूशन।
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला
1: भाई
0: दीप्ति का,
1: डाला।
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। हाँ, तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था, कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे
0: कि
1: प्रोड्यूसर की
0: अच्छे
1: निशानी।
0: प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई, और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और
1: बिल्कुल
0: वहाँ भी गुल बहुत ही, मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनी वन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म।
1: बिल्कुल
0: हाँ, सेम विथ फारूक, सेम
1: रवि,
0: विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं, इसको तो लेने, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, थे, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो कह रवि को बिचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन उसने कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर। फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा जाके, चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे कथा में नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहाँ के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना।

0: उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की, वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियाँ बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
1: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें?
0: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
1: अच्छा,
0: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो। क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी। और फिर बरसातियाँ, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना? तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विद ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह से वो किचन
0: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का, मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं, जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी, वो कमाल है। जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीरत अमान का आता है,
1: जी जी,
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी,
0: और कभी दिल चाहे या माथा यार
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे,
1: शीशा हो या दिल, उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया ना उसने, बहुत सुंदर किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं

0: हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था। तब VHS का जमाना था
1: जी,
0: हाँ, तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा, बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब को सही, हाँ जी जी बिल्कुल, यस यस सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, वो उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी,
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई, हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के, उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में, हाँ
1: जी जी,
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है
1: जी,
0: विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता। फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से, एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले, फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब कर, वेरी वेरी नाइस कॉडिस, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आइए, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते, तो मैंने हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा, और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद

0: मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मेरा इंतजार कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा, तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही है, ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक, तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना, इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे, वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नई बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई जी, जी। और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से, अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आ रही, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, वाह वाह क्या बहुत खूब
1: तो, क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बात है याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है
1: नहीं? बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी, तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक और फिर गाने वाले और फिर मेरे एक्टर और मैं,
1: कमाल ये गाना सुनते
0: जी क्या बात। सरगम बदली

0: चकित भये सगरे नगरे काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
2: हाँ।
1: ये जो बात आपने बताई कि हाँ। मोटरसाइकिल हाँ। और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके, हाँ, और पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग

0: songs to take the story forward.
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे. बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था, और वो था प्यार लगावत. वो तो एकदम अलग शैली का गाना है.
0: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है. क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी. मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल,
0: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको. तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे. कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं. और कोशिश की उन्होंने, और क्या कमाल की. वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, हाँ, वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं.
1: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल.
0: और इतना वो मजे का लगता है. दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है.
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार लगावट भी सुनोगे? ओके.

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें वो
1: टाइटल्स।
0: एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस, टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल,
0: फूल।
1: जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परांस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और

0: बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी
1: हाँ
0: रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो उसमें सारे अलग
0: भी
1: अलग
0: क्या, और
1: एनिमेशंस।
0: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: जी बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना,
0: हाँ
1: इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता
0: दैट्स
1: है।
0: राइट हाँ
1: सुंदर, मतलब वो
0: हाँ
1: ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया
0: हाँ
1: बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: हो उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए, बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
1: कोई
0: कि
1: टकराव होता
0: आओ, बहुत बार, बहुत बहुत
1: था
0: बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत, मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी
2: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।

दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। इसी के साथ ही हमारी आज की ये पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज रहे हैं। समय हो चला है आप सभी से अब विदा लेने का। शाम की दूसरी सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलोक केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:38 हुए हैं। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सावित्री शुरू करती हूँ आज की हमारी दूसरी सभा।

आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर में यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे मार कार्यक्रम के तहत कुछ मार पारंपरिक गीत। गायक कलाकार है रोजलिन रोसा सिंह त्योलर और उनके साथ।

6:25 पर जेमी कार्यक्रम में आज लुंगबुइली जेमी और साथी सुनवाएंगे कुछ जेमी लोकगीत। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे संध्या आंचलिक बातोरी।

सात बजे दिमासा कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिमासा लोकगीत का एक कलाकार है तरुण हो जॉय और उनके साथी। कार्बी कार्यक्रम में 7:20 पर आप सुनेंगे कार्बी भक्ति गीत सबीना तेरोंपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

लिन ने किम चोंगलोई और साथ ही सुनवाएंगे कुछ कुकी आधुनिक गीत 7:40 पर। रात 8 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों का।

8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार के बाद रात 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फोनिंग प्रोग्राम हेलो हाफलोंग का, और उसके पश्चात 9:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। ये थी जानकारी हमारी आज की दूसरी सभा में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।

आइए अब शुरू करते हैं आज के कार्यक्रमों को। सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम के तहत कुछ मार पारंपरिक गीत का एक कलाकार है रोसलिन रोचांदिंग त्योलर और उनके साथी।

रोसलिन रोसांगथलिंग तुलोर और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे मार पारंपरिक गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आगे आप सुनेंगे जेमी लोकगीत गायक कलाकार है लुंगबुली जेमी और उनके साथी।

रिजिंग रिजिंग शुभुंग राजा थी आनी बो राजा थाई खे।

मुठाए हा राजा बेही राजा ही खानारी लाडू, हम जाओ माँ खासाओ माँ खानारी लाडू, राजा भी खानारी लाडू, हम जाओ माँ खासाओ माँ खानारी लाडू। आनी बो राजा टाइके, आनी बो राजा टाइके।

साथ रहे हाँ राजा भी कानारी लाडू हम जाओ माँ खासाओ माँ खानारी लाडू राजा भी राजा

আই দুখুসিনি আনিবা কাহা সাগাং দুলাও হাপসাও হা।

आई खजा मानी आई फाइया लो कहा आई दुखु से।

ऐ खाजा मानी फाया लो कहा आई दुखुसिनी आनी बा कहा ऐ सागांग।

डिमासा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डिमासा लोकगीत गायक कलाकार थे तरुण होजाय और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आगे आप सुनेंगे कार्बी भक्ति गीत, गायक कलाकार है सबीना तेरोनपुई और उनके साथी।

सबीना तेरोनपी और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे कार्बी भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी सुनेंगे कुकी आधुनिक गीत। गायक कलाकार है लिन्ने किम चोंगलॉय और उनके साथी।

0: लिंगने किम चोंगलोय और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे कुकी आधुनिक गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलों केंद्र है।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

कुछ फिल्मी गीतों का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसे प्रस्तुत करेंगी तृष्णा चक्रवर्ती।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट तृष्णा चक्रवर्ती और हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम आपको देते हैं जानकारी हमारे जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रहे खेल जगत के अपडेट्स। हर हफ्ते रविवार को रात के 8:30 से लेकर 8:45 तक प्रस्तुत होता है स्पोर्ट्स राउंडअप। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दे सके अपडेट्स स्पोर्ट जगत में हो रहे सभी एक्टिविटीज के बारे में। अब आरंभ करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप। क्रिकेट में IPL जोरों शोरों से चल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 8वें मुकाबले में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में बेंगलुरु ने 20 ओवर 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 146 रन ही बना सकी और 50 रन से मैच हार गई। टेनिस में जेसिका पेगुला ने शुक्रवार को मियामी ओपन सेमीफाइनल में 7-6, 5-7, 6-3 से जीत के साथ फिलीपींस की किशोर वाइल्डकार्ड अलेक्जेंड्रा इला का सिंड्रेला सफर समाप्त कर दिया। मैच की शुरुआत में 5-2 से पिछड़ने के बाद पेगुला ने शुरुआती सेट को पलट दिया। 5-3 पर इला द्वारा सेट पॉइंट पर डबल फ्लॉन्ट करने के बाद महत्वपूर्ण रूप से सर्विस तोड़ दी, जिससे 2 घंटे और 26 मिनट में जीत दर्ज की गई। ATP मास्टर्स मैच विन रिकॉर्ड। जोकोविच ने 1990 में सीरीज की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में नोडल को पीछे छोड़ दिया है, जब उन्होंने रविवार को अपना 411वां मास्टर्स 1000 मैच जीता। नोवाक जोकोविच ने मियामी ओपन में अर्जेंटीना के कैमिलो उगो कैरावेली को हराकर रिकॉर्ड 411वीं ATP मास्टर्स 1000 मैच जीत हासिल की, जिससे स्पेन के राफेल नोडल के साथ उनकी बराबरी टूट गई। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने लकी लूजर कैरावेली पर तीसरे दौर में 6-1, 6-0 से जीत दर्ज की। सर्बियाई खिलाड़ी ने 409 मास्टर्स 1000 जीत के साथ टूर्नामेंट में प्रवेश किया, जो उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी से सिर्फ एक पीछे था। उन्होंने रिंकी हिजकाटा पर शुरुआती दौर की जीत के बाद नोडल के साथ सबसे ज्यादा मास्टर्स 1000 जीत की बराबरी की। और डॉनबोस्को हायर सेकेंडरी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर मार्सल डोंगल जी बास्केटबॉल कोचिंग दे रहे हैं। हम गए उनसे कुछ बात करने के लिए, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: दोस्तों, हमारे साथ है डॉनबोस्को के स्पोर्ट्स टीचर मार्सल डोंगल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। सर, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कॉलेज कंप्लीट की, ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ।
2: मैंने अपनी पढ़ाई डॉनबोस्को गुवाहाटी से स्टार्ट की थी और 2015 को यहाँ ऐसे स्पोर्ट्स टीचर जॉब मिला
1: जी।
2: तो उसके बाद कंटिन्यू किया एज ए स्पोर्ट्स टीचर
1: जी। आप कब से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हुए?
2: वैसे बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था। तो जैसे कि फुटबॉल, तो 2004 को ये बास्केटबॉल का कोचिंग स्टार्ट किया मैंने गुवाहाटी पे
1: जी।
2: तो वहाँ से बास्केटबॉल का कोचिंग स्टार्ट करके और 2006-07 को नेशनल्स ज्वाइन किया, सब जूनियर में खेलना स्टार्ट किया। तो उसी वक्त से मतलब बास्केटबॉल का सिलसिला चलता रहा
1: जी।
2: तो और 2022 को आफ्टर मैनी गैप्स 2022 को मुझे मौका मिला कि आसाम टीम को सब जूनियर और जूनियर को
1: जी
2: कोच करके बाहर लेके जाने के
1: जी। आपने अपने लाइफ को लेकर क्या सोचा था स्पोर्ट्स को लेकर, और अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं एज ए टीचर, तो उसके बारे में ज़रा बताइए।
2: मेरे लाइफ के बारे में, मैंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत किया है
1: जी।
2: और अपने परिवार और दोस्तों का सपोर्ट पाया है। आई रियली वॉन्टेड टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ बास्केटबॉल और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। एज ए टीचर मैं यहाँ सिखाता हूँ एज ए बास्केटबॉल कोच, और एवरी मॉर्निंग यहाँ 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ कोचिंग देता रहता हूँ डॉनबोस्को में
1: जी।
2: तो उसी तरह आई ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स आल्सो टू ग्रो अप इन बास्केटबॉल।
1: जी, अभी हमें हाल ही फिलहाल में पता चला था कि आपके ही स्कूल से बास्केटबॉल में डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
2: आई शुड से दैट वी हैव रियली वर्क हार्ड फॉर दिस।
1: जी,
2: और ऊपर से मतलब दिमाग में बास्केटबॉल उतना नहीं चलता।
1: जी,
2: तो we try a level best along with our students and then the association members who, और यहाँ हम लोग का एक association भी है basketball का, and then the members are, they are really active in that. तो association का मदद से हम लोग sports के लिए कभी बाहर जाता रहता है कभी कभी। तो हाल ही में जैसे कि आपने सुना कि my students are going for their national level and then the district level. There were around 4 girls and then 2-3 boys were there. Those have already played. And then we are really proud of them and then we would like to help the other students also to grow up in basketball.
1: जी, जो आप यहाँ पे इन लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, क्या कोई मैच है आगे जाकर?
2: हाँ, आगे जाके बहुत सारा मैचेस है। लाइक नाउ रिसेंटली एक मैच हो रहा है आसाम में, वो भी पहले बार नेशनल लेवल का।
1: जी,
2: तो बास्केटबॉल अंडर 23 होगा, तो यहाँ से कोई स्टूडेंट लोग भी गया हुआ है और दे हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड फॉर द ट्रायल। एंड देन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, नाउ आई विल बी देयर एज एन ऑफिशियल एंड रियली हैप्पी अबाउट दिस थिंग्स दैट द आसाम एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन इज हेल्पिंग मी एंड माई स्टूडेंट्स अप। एंड देन दिमाग साहब का जितना बास्केटबॉल प्लेयर्स है उनको हेल्प करने के लिए दे आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू ग्रो अप फॉर द स्टेट लेवल एंड द अदर लेवल्स ऑल्सो।
1: जी, गर्ल्स स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, पहले तो लड़कों को ही बास्केटबॉल खेलने के लिए ज़्यादातर बोला जाता है या खेलने में देखा जाता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा फील होता है?
2: रिगार्डिंग बॉयज़ का तो यू नो वो लोग बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है सब कुछ में।
1: जी,
2: गर्ल्स के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि गर्ल्स को डिटेल्स में जाना पड़ता है और जैसे बॉयज़ को एनर्जी मिलता है वैसे गर्ल्स को नहीं मिलता।
1: जी,
2: तो इन दैट सेंस आई प्रिफर मोर फॉर गर्ल्स बिकॉज गर्ल्स का और भी स्कोप है इसमें।
1: जी,
2: और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है।
1: जी,
2: और देखा जाएगा तो अगर लास्ट टाइम भी हम टीम लेके चला गया था।
1: जी,
2: टीम लेके जाने में गर्ल्स हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, इवन वन फ्रॉम दिमाहासाव, उसका नाम रोज है।
1: जी,
2: तो शी गॉट सेलेक्टेड एज अ स्टेट लेवल, पौंडीचेरी गया हुआ था वो, एंड देन शी परफॉर्म वेरी वेल एंड देन हर एक्सपीरियंसेस आल्सो वाज गुड। शी इज़ फ्रॉम दिदम्बरा स्कूल माईबंग, एंड देन आई होप शी विल डू इट वेल अगेन। तो स्पोर्ट्स खेलने में मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इट हेल्प्स टू ग्रो यू नो आर सेल्फ एस्टीम। तो इसके लिए आई जस्ट वॉन्टेड माई स्टूडेंट्स टू गो अहेड फॉर दिस थिंग्स एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी हेल्प बाई देम सेल्फ। अगर वो अपने आपको हेल्प नहीं कर पाएगा तो नो बडी कैन हेल्प देम अप।
1: जी बिल्कुल। जी, जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स खेलना कितना इम्पोर्टेंट है, तो लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स खेलना कितना इम्पोर्टेंट है?
2: स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी,
2: और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इट गिव्स अस अ लेसन हाउ टू मेक अप अ टीम। कैसे मतलब यू नीड टू नो कि आपको मालूम होना कि हार क्या चीज़ है और जीत क्या चीज़ है, एंड देन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स यू नो यू हैव गॉट ए डेस्टिनेशन, और आपको एक डेस्टिनेशन मिलना चाहिए कि आई हैव टू रीच दिस यू नो एक स्टेट लेवल तक पहुँचना चाहिए।
1: जी,
2: तो इफ़ यू गो अहेड फॉर दिस थिंग्स स्पोर्ट्स में और स्पेशली इन बास्केटबॉल, सिंस आई एम इन बास्केटबॉल सो आई विल टेल यू अबाउट बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल इफ माई स्टूडेंट्स डजंट से देन हमको ये लेवल पहुँचना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाना ही जाना है, देन दे विल डू देम सेल्फ एंड देन दे विल वर्क हार्ड तो आगे बढ़ेगा। अगर इफ दे आर कमिंग फॉर कोचिंग क्लासेस जस्ट फॉर नेम सेक तो वो लोग नहीं आ पाएगा, मतलब आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जितना हेल्प कर सकता है हेल्प कर लेता है वो लोग को, एंड देन बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन एवरीवेयर। जो भी बोलो मतलब किताब पढ़ो या जो भी हो उसमें बेसिक्स तो इंक्लूड होना ही है, विदाउट बेसिक्स वी कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि आप लड़कियों को कोचिंग दे रहे हैं और लड़कों को भी, तो लड़कियों पे इतना ट्रस्ट जो आप रख रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना ट्रस्ट ज़रूरी है एज अ कोच?
2: हाँ, ट्रस्ट तो ज़रूरी होता है क्योंकि यू नो टाइमिंग मेंटेनेंस और डिसिप्लिन, और ऊपर से एक कोचेस का और एक टू एक ग्रुप ऑफ कोचेस और मे बी एन एसोसिएशन, दोस आर ट्राइंग टू हेल्प यू अप। उनका दिल जीतना भी मुश्किल होता है
0: जी,
2: बिकॉज टू पास दिस थिंग यू हैव टू गो थ्रू मैनी ऑब्स्टिकल्स. अगर ये ऑब्स्टिकल्स पार कर लिया आपको, देन यू विल यू नो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन गो हैड फॉर लाइफ. तो इसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को I just used to teach them properly so that they can learn basketball well, and then I could also help them in doing some other things like officiating.
0: जी.
2: Since मैंने भी try किया था officiating करने के लिए ऐसा referee, तो दो तीन जगह में referee करके भी आ गया.
0: जी.
2: तो इसके लिए I told them like अगर आप लोग if you really want to excel in sports, we can help you up in getting courses. Courses like I can give you an idea of like what course do you want to take. क्या लेना है क्या नहीं लेना है
0: जी.
2: तो उसका मुताबिक यू हैव टू गो अहेड फॉर दिस थिंग्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन.
0: जी, जैसे कि हमें पता ही है बहुत सारे यूथ अगर अच्छे रास्ते में भी जाते हैं तो गलत रास्ते में भी जाते हैं, तो स्पोर्ट्स कैसे उन्हें हेल्प कर सकता है?
2: स्पोर्ट्स गलत रास्ते में जाने वाला लोग को ऐसे यूथ हाउ टू टेक देम इन अ राइट पार्ट. सो स्पोर्ट्स इट हेल्प्स अस इन मेकिंग यूनिटी अमंग आवरसेल्व्स. जैसे कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, आपके पास में दोस्त है, तो आप उसको कॉल करके बोलेगा. जैसे कि लेट मी गिव यू माय एग्जांपल ऑफ माय स्टूडेंट्स. मेजोरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग दे यूज़ टू गेट अप एंड देन दे यूज़ टू कॉल ईच अदर, चलो प्रैक्टिस करके जाना है. तो दे आर क्रिएटिंग वन ग्रुप ऑफ अ टीम.
0: जी.
2: तो वो टीम लेके मतलब सुबह को आ जाता है वो लोग, तो सुबह को आके खेलेगा. खेलने के बाद में वो लोग फिर प्लेइंग करेगा, चलो शाम को कहाँ खेलने के लिए जाना है, तो शाम को भी आ जाता है, सेम कोर्ट में आ जाता है वो लोग. उसके बाद क्या करना है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं. सो दे आर मेकिंग सम रूटीन अमंग देमसेल्व्स और यू नो उसमें कोई बात नहीं, और उसमें कुछ गलत काम करने के लिए चांस ही नहीं है वो लोग के लिए, क्योंकि दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स टू ग्रो अहेड इन द स्पोर्ट्स एरिया एंड देन दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द स्पोर्ट्स एंड देन इट हेल्प्स देम टू ग्रो फार मोर बेटर देन द अदर्स.
0: जी जी, अंतिम में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज या एडवाइस दीजिए जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं.
2: मेरा ये मैसेज है कि जो भी बास्केटबॉल खेलना चाहता है या खेल रहा है, उन्हें हमेशा अपना मतलब यू फोकस ऑन योर ओन ड्रीम एंड ट्राई टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स विच यू हैव, और एक स्पोर्ट्स में जम नहीं करके यू कीप ऑन प्लेइंग इन वन गेम सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन वन यू नो इन वन फील्ड ओनली. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द महासव.
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. चलिए दोस्तों, अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम. आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंड अप. आशा करते हैं ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा. फिर मिलते हैं स्पोर्ट जगत की खबरों के साथ. यूं ही सुनते रहिए स्पोर्ट्स राउंड अप हर रविवार रात 8:30 बजे ओनली ऑन आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार. तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत. नमस्कार. तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंडअप, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी तृष्णा चक्रवर्ती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
5: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप

0: के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
2: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: हेलो दोस्तों, फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफों का दूसरा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं, मैं आपके दोस्त शांतनु मजुमदार। तो चलिए बाकी के फोन कॉल्स और फरमाइश के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। हेलो हाफलोंग, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका शुभ नाम?
1: नहीं सर, हम दिल्ली असम से बोल रहे हैं।
0: जी
1: बिमल बसुमतारी
0: जी बसुमतारी जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कोयला फिल्म का देखा तू गीत, ये गाना सुनना था सर।
0: जी, जो शाहरुख खान पर चैलेंज की गई है।
1: ये सर गाना मेरा दोस्त लोग के लिए डिलीट करना चाहते सर।
0: जी जरूर बोलिए दोस्तों के नाम।
1: जी सर, हम लोग है फाइकन मुंडा, रमेश पत्र, लक्की, सिकंदर दास और है रमेश प्रजापति, राकेश पुरम बम्बा, गोल्डी और है पेंशन सेसिटिया, भगवान सिंह परमार, सबको भी सर।
0: जी बिल्कुल, आप हमारे हेलो हाफलोंग कार्यक्रम में फोन किए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपको पसंदीदा की, तो लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाफलो,
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी। और
0: जी भगवान सिंह जी,
1: सर कैसा मौसम है आपके इधर? जी
0: हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है, बारिश का मौसम
1: जी
0: है।
1: सर, हमारे यहाँ तो हल्की बारिश हो रही है सर जी। सर
0: जी
1: सावन भी लग चुका है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर
0: जी
1: जी।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा गीत आपको सुनवाए?
1: जी सर, आज सुना दीजिए आप राजा हिंदुस्तानी का, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे
0: जी
1: देख करम।
0: बिल्कुल, तो लीजिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और
1: बहुत
0: सुनवाते
1: बहुत
0: हैं आपके
1: धन्यवाद सर
0: गीत।
1: जी।
0: धन्यवाद।
2: क्या

0: हेलो हाफलोंग
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर
0: जी, नमस्कार। आपके शुभ
1: जी
0: नाम
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर जी, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: जी, कैसे लगता है हमारे कार्यक्रम आपको?
1: सर जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके हमें ये हेलो हाफलोंग बहुत अच्छा लगता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: हम बहुत सारे मित्र आपके प्रोग्राम में जुड़ते हैं,
0: जी
1: और हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा,
0: जी बिल्कुल
1: और सैलून पर मतलब हम मोबाइल प्रसार भारती ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल। रात के कितने बजे तक दुकान खुला रहता है?
1: दुकान तो रात को 10 बजे तक खुला रहता है और आपका प्रसारण 9 बजे चालू हो जाता
0: जी
1: है।
0: जी
1: हाँ तो हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं और आराम से आपके प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, मेरे दूसरे कस्टमर भी सुनते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाए?
1: गाना सुनना सर ये महबूबा फिल्म का, पर्वत के पीछे चंबेला गांव। हाँ
0: जी, पुराने गीतों पर आप शक रखते हैं?
1: वो पुराने गीतों में जो आनंद है सर जी, वो नए गानों में इतना नहीं है,
0: जी
1: पर जो पुराने गाने जो रेडियो पर बजते हैं ना, तो
0: जी
1: मतलब और सोने पे सुहागा हो जाता है।
0: जी बिल्कुल
1: और आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए मुझे करीब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं,
0: जी
1: जब से प्रसार भारती एक मोबाइल में डाउन
0: जी
1: से मैं जुड़ता रहता हूँ, और हमारे कुछ मित्र भी हैं जो ये प्रोग्राम सुनते हैं।
0: जी
1: एक सुमित रॉय जी हैं भागलपुर के, और
0: जी
1: गौतम राय बोले जी है, धीरज रबारी जी हैं, और दिलीप पाहुजा जी हैं, करणवीर पॉल जी हैं, सभी मित्र हैं हमारे
0: जी आप
1: सर जी।
0: सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गीत।

0: हेलो हाफलोंग।
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: सर जी सेवा लॉर्ड एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल, आपके शुभ नाम।
1: शिवा लोहट सर एमपी विदिशा से। जी
0: जी तो शिवा जी, आप कौन सा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर जी मूवी का नाम है अचानक
0: जी
1: और इसमें एक गाना रहेगा ऊंची ऊंची दीवारों पे हम घुट घुट के मर जाएंगे।
0: आपको हमारे हेलो हाफलोंग कार्यक्रम कैसे लगता है?
1: सर जी बहुत बढ़िया लगता है और इसकी प्रस्तुति तो बहुत ही लाजवाब रहती है सर जी, और सभी प्यारे प्यारे श्रोता आते हैं और बात करने का बहुत अच्छा मन होता
0: जी बिल्कुल, आपके कारण हमारे ये कार्यक्रम और भी दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनता जा रहा है। तो आप हमें कॉल करे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनवाते
1: जी।
0: हैं आपके मन पसंदीदा गीत, तो लीजिए
1: थैंक यू सर।
0: सुनती है।

0: मैं युवराज बात कर रहा हूँ।
1: जी, तो कौन सा फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए? ठीक
0: हाथी मेरा साथी, चल चल मेरा हाथी।
1: है, आपको सुनवाते हैं हाथी मेरा साथी फिल्म के ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग।
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार
1: आप कैसे हैं?
0: जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। गाँव कोदाली मंदिर मजाना नगर जिला त्रिवेणी। हाँ
0: तो जितेंद्र जी, आपको कौन सा गीत सुनवाए?
1: गाना का लाइन है आया माहिया और फिल्म का नाम है तीजा।
0: जी, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। आपके शुभ नाम?
1: नमस्ते, मैं जमशेदपुर झारखंड गांव सुपाई से देवेंद्र तांती बोल रहे हैं।
0: देवेंद्र जी
1: जी सर, आपके में कई बार हम भाग लिए हैं
0: जी
1: आपके हेलो फार्मेसी में और व्हाट्सएप में भी।
0: जी आप रेडियो सुनने में शौक रखते हैं? कौन सा कार्यक्रम हमारे ओर से आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
1: ज्यादा सर हेलो फार्मेसी अच्छा लगता है क्योंकि इधर उधर श्रोताओं का बात सुनने को मिलता है,
0: जी
1: तरह तरह
0: बिल्कुल
1: का जानकारी भी मिलता है,
0: जी
1: किस शहर से, किस गांव से, कहां से, क्या है बोल के।

0: हेलो हाफलॉन्ग
1: जी सर नमस्कार जी,
0: जी। नमस्कार
1: मैं मुजफ्फरपुर से राजू कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी। राजू जी, वैसे आप क्या करते हैं?
1: रेडीमेड कपड़ा का दुकान है
0: जी
1: और दुकान में बैठे बैठे रेडियो का आनंद लेते हैं सर, क्योंकि
0: जी
1: रेडियो सर मेरा जीवन साथी है। बचपन से ही सर अभी तक लगाव है
0: जी
1: और लगता है कि ये लगाव सर छूटेगा नहीं। जैसा
0: जी
1: आप लोग कार्यक्रम को चलाते हैं
0: जी
1: और इतने प्यार से अब आप लोग कार्यक्रम को पेश करते हैं मीठी मीठी आवाजों में, तो दूर आना बहुत मुश्किल होता है सर। जी
0: आज आप कौन सा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर, फिल्म का नाम अग्नि है,
0: जी
1: उसमें गाना है कहाँ लाया मुझे यार पहाड़ों में। जी
0: तो ये गीत आप किसी को डेडिकेट करवाना चाहते हैं?
1: सर, मेरे एक हैं
0: जी
1: याकूब जी और एक हमारे लेडीज दोस्त हैं अर्चना जी, तो
0: जी
1: मैं दोनों को सर सुनाना चाहता हूँ।
0: जी तो सुनिए, आपके फरमाइश पर आपके पसंदीदा ये गीत।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही हम समेटते हैं आज का और इस हफ्ते का हेलो हाफलॉन्ग प्रोग्राम। जिन श्रोताओं को आज कल करने का मौका नहीं मिला, वो निराश ना हो और इंतजार करे अगले बुधवार का। हर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप हमें कल कर सकते हैं। और कल करने के लिए आप हमारे नंबर नोट करें। नंबर है 9435700596, यानी कि 9435700596। हमें आपके कल का रहता है बेसब्री से इंतजार। अब आपके दोस्त शांतनु मजुमदार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप आनंद ले रही थी फोनिंग प्रोग्राम हेलो हाफलोंग का, जिसकी प्रस्तुत करता थी संतनु मजुमदार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना

0: बेटा जेल जाएगा?
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत। सबसे पहले सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत।

दोस्तों, ये था आज का हमारा चित्र गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजने ही वाले हैं। कल सुबह की पहली सभा में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी सावित्री को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।